तो ए पाशल हो जों द टी के या का हो जो ओमान बदे नेंगे दे या तो ईरान ये से स्वादत ए आही के ए ए या पनीना को तो ओमान वो ये के ए या आज बाम को चलता है टी नेशनिंग को खुद आगे का जील but unhappy he is unhappy जो खुद तो शुन्या बद हो जों को उन्हें According to a Dina Kigogo, a Akutaya, it has under the regional officials in Lingo. According to the officials, then Lenny Dano, a Trump administration, a Omen, Yichahaneda Yilau, a DRJ, and here ain't a Nihia Bezra that it ahunde, Nihikuji, de Liante, Atobehade Zita Dan, no shame put out a Omen Yistahodne. According to a Iranian do Omani management is necho e adri yos wotoli di adri chohunt e ike cho ishin put ana bik e yas tiko. Ed e ya konti kote tina ilch edaha ilha ninige e na zamba kago